0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.